0: શ્રોતા મિત્રો, થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં જયા ભારતી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है.
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया.
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितम्बर तक मुंबई में चलेगा.

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटेल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है वंदन वार।

आज का चिंतन। संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम, सौहार्द, मानवता, परोपकार की भाषा पढ़ सके। अब प्रस्तुत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 305। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉ. शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। भूले बिसरे गीत 7 से हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 से 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज का सुबह का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा 9:30 पर पार्श्व गायिका डॉक्टर भूपेन

हजारिका आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का है, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। सुबह 10 बजे पिटारा में सेहतनामा पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की है। ग्यारह बजे सुबह रंग तरंग, बारह बजकर 5 मिनट पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6:35 पर संध्या रंजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा सुनिएगा किराना घराना भाग 8, कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस, 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आज सुनेगा झलकी नया तजुर्बा, लेखन हरीश दीक्षित का, निर्देशन अनुराधा शर्मा का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर सुने पार्श्व गायिका आशा भोसले पर केंद्रित होगा, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। 10 छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है, जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस, गाना आज आपने सुना भाग 305।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर

0: जो बातें बताई गई हैं उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
1: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
0: जी जी जी।
1: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी, सूक्ष्म लगाव, अभी जो महत्वपूर्ण जो है, हाँ। जो सब घराने में रहते लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है, वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण,
0: हाँ।
1: उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर। और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है।
0: बिल्कुल।
1: ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
0: अच्छा।
1: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
0: जी, जी।
1: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
0: अच्छा।
1: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
0: अच्छा।
1: लेकिन उसका जो मध्यम है मुल्तानी का, पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
0: जी जी जी,
1: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
0: अच्छा।
1: ये सब बातें जो है उसका बहुत ही, इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है।
0: जी, जी, जी।
1: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है। हर स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
0: जी, जी।
1: किसी भी स्वर का प्रयोग राग की प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है।
0: जी, जी।
1: विलंबित आलाप, मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जिससे राग की पहचान हो जाती है। और शुद्धता और भाव का संतुलन,
0: जी,
1: किराना घराना केवल तकनीकी शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है।
0: जी, जी।
1: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
0: वाह।
1: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है। इसीलिए हमारी गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में,
0: हाँ।
1: जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते, पारदर्शकता रखते,
0: हाँ।
1: वही आपका गाना
0: आपके
1: है,
0: गायन में भी वो,
1: हाँ, ये शुद्धता होनी है।
0: वाँ, वाँ।
1: और एक प्रामाणिक, ये
0: क्या बात,
1: गहन विकास का महत्व, हाँ। यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए,
0: हाँ,
1: नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया है।
0: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
1: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं, यमन, तोड़ी, दरबारी कानरा, भैरव, हाँ। मुल्तानी, पुरिया, ललत, बागेश्री, मियाँ के मल्हार, शुद्ध कल्याण, पुरिया धनश्री, ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है, जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है, उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही वाव है, ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मुल्तानी गा के सुनाऊं तो
0: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
1: मुल्तानी को हम पुरुष राग कहते हैं, उसके
0: अच्छा।
1: स्वर में जो पौरुष है,
0: हाँ, हाँ।
1: और उनका जैसा ही उसकी चलन में ही मधुवंती जाता है, वो थोड़ा नजाकतदार राग है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का गाना है।
1: वाह वाह,
0: दया करो गिरधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हो वो हमारे गुरु

0: जी पंडित प्रसाद सावकर के पास जी, कुछ जी, साल मैं हाँ। सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का, तो आवाज की फिरक अच्छा। बढ़ती है। खान साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

तुलसीदास फिल्म की रचना आपने सुनी आशा भोसले और मोहम्मद रफी के आवाजों में। जी एस नेपाली की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। आज संगीत जगत की महान कलाकार पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिवस जन्मतिथि है। अपने जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पद्म विभूषण आशा भोसले को शत शत नमन।

नवरात्रि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जीएस नेपाली ने इस गीत को लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी। अब प्रस्तुत है बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, तलत महमूद की, शैलेंद्र शब्दकार हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: सज धज के।
1: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए सविता सिंह को, नमस्कार।
2: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
3: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: इन मुख्यमंत्री अने वर्तमान वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जुवायेलू वाइब्रेंट गुजरात नु सपनु आजे वैश्विक रोकाणकारो माटे विश्वास नु प्रतीक बन्यु छे। आज विजन ने केंद्र मा राखीने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना नेतृत्व मा नवी दिल्ली मा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 कर्टन रेजर कार्यक्रमे गुजरात ना औद्योगिक रोकाण मा एक नवी दिशा आपी। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले उद्योग जगत ना अग्रणियो ने गुजरात नी विकास यात्रा मा सहभागी थवा आमंत्रित कर्या।
1: प्रधानमंत्री जी के शब्द धारा संकल्प को हम वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गति देंगे। आज मैं देश और दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स को गुजरात आने का निमंत्रण देता हूं। आइए गुजरात की विकास यात्रा में सहभागी बनिए, नए अवसरों से जुड़िए और गुजरात के युवाओं की प्रतिभा के साथ अपने भविष्य को जोड़िए।
0: गुजरात हवे मात्र पारंपरिक उद्योगों ज नहीं परंतु वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 थकी सेमीकंडक्टर, फिनटेक, ग्रीन हाइड्रोजन अने एआई जेवा भावी उद्योगों मा रोकाणनु वैश्विक हब बनशे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना नेतृत्व मा गुजरात सरकार विकसित भारत 2047 ना संकल्प ने साकार करवा विकसित गुजरात ना मंत्र साथे आगळ वधी रही छे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 જેમણે દેશને સ્વચ્છ ભારતનો મંત્ર આપ્યો એવા આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સ્વાગત માટે ગુજરાતે અપનાવ્યો છે એક અનોખો અભિગમ જેનું નામ છે સ્વચ્છતા સે સ્વાગત, જેને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ હંમેશા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી છે। એ જ સ્વચ્છતાના સંકલ્પ સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં સંસ્કારી નગરી વડોદરા કરશે તેમનું સ્વચ્છતાથી સ્વાગત। ગામડાના ચોરાથી રસ્તાઓ સુધી, શાળાઓથી લઈને તળાવો સુધી હજારો હાથોની લોક ભાગીદારીથી વડોદરા સ્વચ્છ બની રહ્યું છે। કચરાનો યોગ્ય નિકાલ થઈ રહ્યો છે અને હરિયાળી માટે રોપાઈ રહ્યા છે નવા વૃક્ષો। શબ્દોથી નહીં, સ્વચ્છ રસ્તાઓથી, માત્ર અભિવાદનથી નહીં, જવાબદારીથી।
2: સુસ્વાગતમ વડાપ્રધાનશ્રી,
0: તમારા સ્વચ્છ અને હરિયાળા ગુજરાતમાં।

0: ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। SH बिहारी की बोल थे ओपी नैयर की तर्स। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह।
2: हम है राही प्यार के कार्यक्रम यही पे संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

0: जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए एआई सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली

0: पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमरीका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर।

0: पेट्रोल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग एक घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: आजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

0: से क्या होता है?
1: दीटर
2: तब्दीर।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ा

सोना महापात्रा और रविन्द्र उपाध्याय की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था और तलाश फिल्म का गीत आपने अभी सुना। समारोह फिल्म का ये गीत है के लक्ष्मी मोहन की आवाजें हैं।

अरिजीत सिंह की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत की धुन बनाई थी। महान पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म दिवस जयंती है। महान गायक, गीतकार, संगीतकार और असम की खूबसूरत सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें, सुनना न भूलिएगा आज की फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर सुनेगा, जो केंद्रित है महान गायक भूपेन हजारिका पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: उनका सफर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: सुन, विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत, आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी।
2: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
1: जी,
2: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
3: आ भागना प्रायोजक हता एम के फर्नीचर, 5 मार्च नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज पासे वडोदरा।
4: विविध भारती नो वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। સારા ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ટાઈમ અત્યારે સવારના 9 વાગ્યા છે। સુખનું સોનું તો સારા ગણદેવીકરનું જ, સારાનું સોનું, સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિનું સોનું, સારા ગણદેવીકર જ્વેલર્સ, દાંડિયા બજાર અને વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા।
5: બદલો બદલો આદત બદલો,
6: મશીનમાં કપડા નાખતા પહેલા ચેક નહોતા કર્યા શું?
5: બદલો બદલો આદત બદલો, હવે નજીકની બેંકમાં જઈ ફાટેલી જૂની નોટ્સ બદલાવો। જો બેંક ના પાડે તો આરબીઆઈ ની ઓમ્બુડ્સમેન ને ફરિયાદ કરો। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો।
7: દર બુધવારે રાત્રે 8:15 વાગ્યે વિવિધ ભારતી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ પરથી સાંભળો।
8: પ્રાયોજક છે કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર।
9: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हिचकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे, राजशेखर ने से लिखा था और जैसलिन रॉयल का संगीत था। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, हर साल 8 सितंबर को। सभी जानते हैं साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ना लिखना और जानना। पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और बहुत सारे कार्य करने योग्य बन जाता है। लेकिन सही अर्थों में जानना तब होता है जब हम ज्ञान और विवेक यानी सही गलत की हमें पहचान होती है। जो लोग साक्षर नहीं है उन्हें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है और आजकल तो पढ़ने लिखने के साथ साथ संवाद करना, टेक्नोलॉजी और तमाम उपकरणों का ज्ञान भी साक्षरता में शामिल हो गया है। यानी सबका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितनी की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को साक्षर बनाना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या उनकी पढ़ाई में कोई आर्थिक परेशानी आई या कोई और परेशानी आई। उन सबकी हमें मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का यह भी